निर्धन को पले निर्धन को पले निर्धन को पले हाय हाय निर्धन को पले गुरु नानक दे प्यार विच कलगिया वाले दे प्यार विच इक वारी सारे आखो सतनाम अज पंजवां वीरवार है ये एक प्रकरण जो शुरू होया है खालसा करणी दा नाम है खालसा रहणी दा नाम है खालसा अमली जीवन दा नाम है खालसा गुणा दा नाम है उना गुणा विच्चों एक गुण खालसा सो निर्धन को पाले ते निर्धन नू पालना पांच तरह दा पहला चार तरह दा आप जी ने चारे वीर बार सरवन कीता है केवल बोल के लंग दे हां आज पंजवां निर्धन नू पालना महाराज जी सेवा लैन पहला निर्धन नू पालना दसवंद कढ़ना लोड़वंद दी बां फड़नी दूसरा निर्धन नू पालना के किसे दे औगण नू थोड़ा बर्दाश्त करके कलेश दा समा लंघा दे ए भी निर्धन नू पालना ए भी निर्धन नू पालना किसे दे औगण नू साध संगत जी बर्दाश्त करके ते कलेश दा समा लंघा देना बड़ी बड़ी तप है तप बहुत बड़ा तप है तीसरा निर्धन नू पालना किसे दा हक ना मारना चौथा निर्धन नू पालना रसना नाल अपने नौकर नू अपने तो छोटे काम करण वाले नू घर दे बुजुर्ग नू रसना राई मिठे लफज बोलने वो भी निर्धन नू पालना है सत्संग अज पंजवां निर्धन नू पालना मेरे महाराज सच्चे पातशाह सेवा लैण एक बारी आओ सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल ए पंक्तियां बोलो फिर महाराज पंजवां निर्धन नू पालन दी सेवा लैण

मेरा नाम ले दी, तेरा काम हो जाएगा। इन्ना काम करी, मेरा नाम ही चलता है, मेरा नाम ले दी, तेरा काम हो जाएगा। पर ख्याल करो, जे एक संसार दे विच किसे वड्डे मनुख दा जेड़ा कुछ भी नहीं, जेड़ा कुछ मनुखां ते सिर्फ हुक्म कर सकदा है, जेड़ा कुछ भी नहीं, जिसदे कोल कुछ हो सकदा है, कुछ मनुखां नाल ज्यादा साधन होन, जे उसदा नाम लै के काम हो सकदे ने, जेड़ा फिर वड्डियां तो वड्डा शहनशाह है कि उसदा नाम लैके साडे काम नहीं हो सकदे। जब सतनाम श्री फिर उसका नाम लैके भी काम हो सकते ने। नाम लेना, उसकी याद विच रहना, उसके नाम नू विसारना ना, उसके नाम नू हिरदे विच उकर लेना, ते धर्मराज नू कह देना, जिसने तैनू बिठाया मैं उसका बंदा। जब सतनाम श्री हो फिर ता धर्मराज दे भी अड़का नहीं लगना। जब सतनाम श्री वाई ते जदों धर्मराज नू भी पता लग गया ना, जिसने मैनू बिठाया है ए उस मालिक दा बंदा है, उसका नाम लै रहा है, ते ओ भी अगों हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, ते पता की बोलेगा, हों सेवक ठाकुर अविनाशी। जब सतनाम श्री मैं तुहाडा सेवक, तुसी मेरे मालिक। इस करके कहंदे नाम

पर कमाल होगी तू कीमत नहीं जानदा, तू जानदा ही नहीं तेरी की कीमत है, कुछ भी नहीं। उस शरीर दी की कीमत है, कुछ भी नहीं, वो तो मिट्टी है। तू जानदा नहीं।

ये जाएगा तन नाम अमोला, तन ते पाया होया चोला भी नाल नहीं जाना, छड़ जाएगा। ये जाएगा ए हर का चोला, जब सतनाम श्री।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे नहीं दोस्ती करनी है

कच्चा सजन कहंदे ने, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़ा पासे ले जाए, ओनू कहंदे ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है, ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छड गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त, पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे, ओनू आखे छड माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी, किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े, ओ पक्का सज्जन, पक्का।

परमेश्वर, सज्जन सच्चा पातशाह, सिरसाहां दिसा जिस पास बैठे हैं सोइए सबना दा विसा, जिद कुल बैठ के आदमी ओदे वर्गा हो जावे, सच्चे कुल बैठांगे ते सच्चे वर्गी हो जावांगे। इस करके दोस्ती करनी है, कच्चे दी ना करो, पक्के दी करो ते सच्चे दी करो, ताकि आप भी सच्चे

जोगी दे लंगर विच प्रसाद छक तेरा बचाव हो जाएगा, नहीं तो तेनू अस जिंदा नहीं छड़ना। पर भाई तिलकू उन्हां दा मन गुरु नाल जुड़े है, ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिहा चीजां लागे नहीं आंदियां। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने, भाई तिलकू भूआ खोल लंगर खा नहीं ते तेनू मार देंगे। हुण जिस गुरु दी ओट भाई तिलकू ने लई, ओ गुरु भाई तिलकू दी रखिया कर रहे है। उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जेड़ी चुक के पिछा सुट दिंदी।

अगे नहीं जान दिंदी, चुक के पिछा सुट दिंदी। ओ शक्ति है नाम दी, क्योंकि जिथे नाम होवे उथे ए चीज असर नहीं करदी। हुण ए भूत प्रेत थक के वापस आ गए। जोगी नूं कहण लगे, साडा

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया भाई दिल को जी उठे उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो जांदे।

तेरा गुरु केड़ा है जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता है। उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा, मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं होते सारिया दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहब है। जोगी कहन लगा, वो रहंदे कित्थे? भाई तिलकू जी कहन लगे, ओ श्री अमृतसर रहंदे। जोगी ने कहा, तिलकू चल फिर मैनू अपने गुरु को ले चल। भाई तिलकू जी ने

इस जोगी ने पाई दिल को देनाल पाई पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गया। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वाल लै तुरिया। इस वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल करो।

नानक तिन सिंह क्या कीजै दोस्ती जे आप भुलाए करतार उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओहदे नाल करो जिहड़ा

ते करो जिथे निवास सको ते निब सके दोस्ती ओ दे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे ए ठीक है के भला करो जरूर पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे ता उथे भला करो जिथू

जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने, उस गुरु की उम्र किन्नी कै? भाई दिल को कहन लगे, पिता का जन्म के जाने पूर्व दुनिया दे हिसाब

ओ सारी दी सारी जोगी समेत तिलकू समेत कनात दे परले पास बिठा दियो, दूसरे पास साडा आसन ला दियो। गढ़ शंकर तो जिन्ने भी लोग आ रहे ने कोई भी साडे मथे ना लगे, श्यामाना सिखाने ला दिता, विष्कार एक कनात ला दी के जिन्ने भी लोग गढ़ शंकर तो आए सा जोगी ते पाए दिल को समेत कनात ले कपास बिठा दिते, दूसरे पासे धन गुरु अर्जुन साहब संगता समेत आके बैठ गए। बैठ दिन सरबा ने पूछिया, जोगी जी तुहाडा ए सज्जा कन्न

जो गिरोरे रहा नहीं जाता पातशाह दर्शन दे होण बर्दाश्त नहीं होता कि होण तेरे तू दूर रवा। गुरु साहब ने इशारा किया, सिखा ने कनात हटाई, जदू जोगी ने दर्शन किए।

पूछा बादशाह, बड़ा आदमी कौन है? उसकी बहुत सी कारें, उसकी बहुत फैक्ट्री है, इसके बहुत से बंगले हैं। नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

प्यार नाल सुनियो की नहीं करदा कोई रचना वांझी रखी जाए पर कई दफा ऐसिया चीजा बंदिश दे विच आउंदियां गवैशी विच जिसनू बिखड़े टेढ़े ढंग नाल थोड़ा जा गाया जांदा है ते आम जिन्हां सजना जां भैणां नू ताल सुर दी समझ ना होवे ते कई दफा ऐसी बेरसी बेतालापन पैदा हुंदा है जिदे नाल चीज दा समुचा रस माणिया जांदा है। सो मैनू इस गल की हार्दिक प्रसन्नता होगी जे भैणां जां वीर लय सुर दे अंदर बोल सकन ते इस चीज नाल बोलन ते नहीं तां प्यार नाल सरवण करना इस शब्द दे विचों बहुत कुछ मिलता।

0: खालसा जी आज सब तो पहला अमृत दे दाते सरबंस दानी कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा बख्शिया फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

मेरा कट कट के अंतर की जान तू प्रभ मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तू भले बुरे।

स्वामी सब विद जाने प्रभ मेरा अंतर जामी जान हर अंतर जामी सब विद जाने और किस पे आप सुनाए

सरदा मन की पुए प्रभु मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जानदा है। जीव दे मन अंदर की है, मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जानदा है। जिदे अगे आप असि शीस नवाने ना, वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की, वो चाहता की प्रभु मेरा अंतर जामी जान। मेरा प्रभु जानता है, अंदर की बुझ लेंदा है, वेख लेंदा है कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लेके आया, अज की मांग है, अज इसनू की चाहिए, जो भी चाहिए वह सतगुरु देंदा है। क्यों? अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे प्रभ मेरा अंतर जामी जान। जिदे मन अंदर कोई श्रद्धा ही ना हो, श्रद्धा पूर्ण किवें हो सकती? जे असी कोई श्रद्धा लैके आवांगे, कोई भावनी लैके आवांगे, सतगुरु जरूर पूरी करनगे, क्योंकि प्रभ मेरा अंतर जामी जान। वो जानता है कि अज भावनी मन अंदर की है। प्रभ मेरा अंतर जामी जान, अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल। कुछ बोलो भी ना, कुछ कवो भी ना, कि परमात्मा सुन लेंदा, परमात्मा जान लेंदा है। अनबोलत ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि आज कैसी मंग आई। परमात्मा से ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे तो मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे तो मैं उसनु देव। असी आने ही मंगने वास्ते, इस डर से डिगने ही ता वा कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहिए दे दे। सतगुरु एक खिण भी नहीं लाता, सेवक चोली विच दात पा देंदा। किन्ना दी जिन्हां यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी भरोसा करी ਇਹਦੇ ਤੇ।

मेरा अंतर जामी जान, प्रभ मेरा अंतर जामी जान, पूरा पेटो वड पागी मने पया परगासा, कोई ना पहुंचने हारा दूजा अपने साहिब का परवासा, अपने सतगुरु के बलहारे आगे सुख पाछे सुख सहजा,

सका, हर बिन रह न सको इक राती, हर बिन क्यों जीवा मेरी माई, हर बिन रह न सको इक राती, हर बिन क्यों जीवा मेरी माई।

सिमरन कैसा है। सब आंख दे नहीं प्रभु के सिमरन कार्य पूरे ते मनुख चाहता है मेरे काम विच कदी विघन पवे ही ना, मेरे सामने कदी औकड़ आए ही ना, मैं कदी दुख का सामना ना करा। ये साडे मन की इच्छा है। ते साहब कहते ने जे तू ऐसी इच्छा रखने ना कि मैं दुखां दे विच ना पवां, एक कम कर, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरा है, प्रभु कै सिमरन कबू ना चूरा, प्रभु दे सिमरन करन दे नाल सारे कार्य पूरे हो जांदे। ते जिन्हां ने प्रभु दा सिमरन कीता है उन्हां दे कार्य पूरे होए ने, जिहड़े सिमरन विच लग गए ने, जिहड़े नाम जपदे ने सिमरन करदे ने। प्रभु के सिमरन कार्य पूरे,

कारज पूरे जिस नाम हृदय सोई वड राजा। नाम कितनी उची दाद है। जिस नाम हृदय सोई वड राजा, जिस नाम हृदय से पूरे काजा। जिदे को नाम है ना संसार तो सब तो वड्डा राजा कोई, जिदे को नाम है इस पूरे काजा, उदे कार्य भी सारे पूरे हो जाते ने। ते नाल ए भी कहा गया है, कह कबीर निर्धन है सोई जा कह हिरदे नाम ना होई। ओ ते निर्धन है जिदे को नाम नहीं, जिदे को सिमरन नहीं, जिदे को नाम है सिमरन है, वह राजा है, वो कार्य भी पूरे नहीं।

साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण की जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे इकट्ठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना तो मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी इन्हां लई भी भोजन तैयार कर लो। सो कहण तो भाव सतगुरु ने केवल ये बचन आख्या नहीं, पहले बचन नूं कमाया कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नूं वेखणा। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहण वाले ने ਉਹ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਵੇਖੀਏ,

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में। एक गल वखरी है कि आपां जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं। सारिया अंदर जोत परमात्मा दी है, हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारिया अंदर जोत है तो जोत नजर क्यों नहीं आउंदी? साहब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे? कहिंदे ने जोत है अंदर, पर ऐसे अंदर एक हौमे दी जात दी दीवार भी खड़ी हुई है। जद तक वो दीवार नहीं गिरदी जोत नजर नहीं आउंदी, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नूं प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहिंदे ने जात ना पुछ जोत दी पहचान कर। ते जोत दी पहचान तां हो सकदी है, आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नूं छड़ दईए, ऊंच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकदी है। साहिबां ने बाणी विच कहिआ

छू ई बचन। धन गुरु नानक पातशाह कह रहे ने, हुण तुसी ए देखो गुरु साहिबान ने कहा नहीं बल्कि इस नू कर दिखाया है। हुण करके भी ऐसा दिखाया है कि मेरी निगाह अंदर केवल जोत नू थां है, जात नू बिल्कुल नहीं। मैं जात नू मनदा ही नहीं, केवल जोत, क्योंकि मनुख दे अंदर जोत है ते मैं केवल जोत दी पहचान दसी है। हे गुरसिख, तू जिदे अंदर वेखे जोत वेख, क्योंकि जे परमात्मा ने तेनू संसार विच भेजे है ते अपनी जोत टका के, जे तेनू अखां दित्तियां ने ते केवल इसे लई कि तू परमात्मा दी जोत ही वेखे। मैं नहीं चाहना तू होर कुछ वेखे, केवल परमात्मा दी जोत ही वेखे। अज साडे अंदर फर्क क्यों पिया, असी जात वेखने आ, परमात्मा कहिंदा जोत वेखो। जात तक नहीं आ, जोत नजर नहीं आउंदी, जोत छिप जांदी है। इसलिए आपां हुण जोत दी पहचान किवें करनी है, गुरु नानक पातशाह अगे बेनती करिए, पातशाह तुसां ने जोत वेखी है ते सी भी तुहाडे सिखां साडे ते भी करो कृपा, असी जोत वेख सकी। साध संगत, इको नगर दे रहण वाले धन गुरु नानक पातशाह, इत्थे ही रहण वाला ऐसा एक मनुख, एक व्यक्ति जिन्हों गुरु नानक पातशाह जद मिलदे कहिंदे पुरखा सुना की हाल है, किधर चले हैं, की काम करना है। कहन लगा महाराज काम की करना है, मैं लोकां दी उस्तत करना। ना की है तेरा, कहन लगा जी दाना। साहब कहन लगे तेनू पता है दाना किनू कहंदे ने, कहंदे नहीं महाराज, कहंदे ने दाना कहंदे नू सियाणे नू बुद्धिमान नू, कि तू सियाणा हो के उस्तत लोकां दी करने, आ मैं तेनू सच्चे मालिक दी उस्तत करनी दसा। कहन लगी पातशाह तुहाडा मेरा मेल नहीं हो सकना, तुसी बेदी कुलभूषण बेदी अंश विचों ते मैं एक छोटी जी जात विचों, तुहाडा मेरा संग किवें हो सकदा। साहब कहन लगे क्यों नहीं हो सकदा, मैं तेरी जात ते नहीं पुछी, ना तेरी जात वेखी है, मैं ते तेरे अंदर जोत वेख के आवाज दिती है। जेड़ी तेरे अंदर जोत है ना, बड़ी निर्मल है, तेरे मेरे विच अंतर की है, आ दाने आ, मैं तेनू दाने तो मर्दाना बनावा। सोई मर्द मर्द मर्दाना, दाने तो मर्दाना बना दिता। कहन लगी पातशाह साडे विच दूरी उतनी ही है, ओदे विच फर्क नहीं पिया, दाने तो केवल मर्दाना बनाया, गल नहीं बनी, जात दी दीवार उथे ही खड़ी है। साहब कहन लगे भोलिया मैं भी गरा देना, दाने तो मर्दाना ते मर्दाने तो भाई मर्दाना, अज तो तू मेरा भाई होया, लै हुण तेरे ते मेरे विच अंतर काई ना, तू मेरा भरा बन गए, तू ते मैं एक हो गए हां, मैं जात दी दीवार भी गिरा दित्ती है, अज मैं तेनू अपना भरा बना लिया। क्योंकि गुरु नानक पातशाह ने कहा नहीं बल्कि ऐसा कर दिखाया, सतगुरु दी बाणी है।

गुरु नानक पातशाह दी इस आवाज नू पंचम पातशाह ने इस तरह बुलंद रखिया, ऐसा बुलंद रखिया। हुण जिस वेले जोत दी गल चली, अज वेखो तुसी धन गुरु अर्जन साहब ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दी तैयारी करके, गुरु ग्रंथ दी साजना करके उन्हां पिछड़ियां जातियां नू मान दिता जिन्हां नू कोई भी अपने नेड़े नहीं सी बैठ दिंदा। इथों तक कि जिस वेले भगत नामदेव नू दोहरे मंदिर विचों कढ़िया गया, उदो हरमंदर विच थां किन्ने दित्ती? आओ जरा ख्याल करना, जेड़ा हरमंदर गुरु ने तैयार किया है, इस हरमंदर अंदर हर किसी नू मान ते सत्कार किवें

ही परमात्मा। मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी आ ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहीदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंडता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करन आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने कानपुर कोलों बर्दाश्त